तू मिलिया ता कई जन्म मेरी नब्ज विच तड़के, फिर मेरे साह ने तेरे साधा एक घुट भरिया ता मत्थे विच कई काल पलट गए। एक गुफा हुंदी सी जिथे मैं सां ते एक योगी, ते योगी ने जदों वाहवां विच लैके मेरे सावां नूं छोया ता अल्लाह कसम एहो ही महक सी जो उहदे होंठां चों आई सी।

एक कही माया कही लीला के शायद तू ही कदेव योगी सी या वो योगी है जो तेरी सूरत धार के मेरे कोल आया है ते मैं ओही मैं हाँ।